0: Baiklah warga, sampai di sini akhirnya Hana bersama Anda hingga Mandalika siang di Pesona Mandalika. Nggi Tumhi, thank you. Mujem maafkan DJ kalau ada salah kata dari Hana warga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी? ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है.
2: चाचा बोलो बोलो प्यार है, मारो चांटी आला करिश्मा कपूर आचा, ओ गंदा आला सारुकन आचा आचा.
1: और हिंदी कविता
2: डंगर है डंगर है.
3: सोना सोना
2: मंडलिका.